सुंदर स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हुआ नानक नाम चढ़दी

मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना परतरे पर तन रूप कन्नी सूत कन पै लायत बारी खाहे नानक साधमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमना मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रजिक संभाहे खाना पीना पवित्र है दितोन रजिक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया।

सुगवे मोहका कहिया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो न्याओ मोहला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना वे रास जे हां जाने तिहो वरते वेखो को नरजास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाण कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाले आने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिस्ता थाओ न थे महला दूजा होए आना करे कम

चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रहा तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुर धामां दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते से बास

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गोर प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजाय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथा कवना

जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहलस सहज सुवाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवा सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठया सोहिया सबना दावेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहु सत

0: पौड़े वड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर आनंद वधाए तुद घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस है जगता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: स्लो पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगी।

0: बड़े बड़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबक तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला परपोर देस है जगता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: सलोक पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगी आई।

0: सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला
1: तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मन महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिव

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चौने चौने सत्रो हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश पेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हि बखान्यो दोहरा

बोल जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ।

चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षे आरे आए। तेग तेग फतेह।

जा कौ दया तुम्हारी होई, से साह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नाम में रंग समाया, सतगुर सत, सतगुर के बचन सत, सत साध संगत है गुरमुख जानिया, दर्शन ध्यान सत, शब्द ज्ञान सत, गुर सिख संग सत सत कर मानिया, दर्श ब्रह्म ध्यान शब्द ब्रह्म ज्ञान, संगत ब्रह्म थान प्रेम पहचानिया, सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान, काम नेह काम

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी जौ हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने शूटन को जतन करहौ हम शूटे तुम आराधे जौ हम बांधे मोह फास हम प्रेम बदन तुम बाधे अपने शूटन को जतन करहौ हम शूटे तुम आराधे माधवे जानत हो जैसी तैसी

जो हम बंदी मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बादे, अपने छूटन को जतन करहो, हम छूटे तुम आराधे, जो हम बंदे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बादे, अपने छूटन को जतन करहो, हम छूटे तुम आराधे, माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी, रहा मीन पकड़ फंक्यो और काट्यो, रौंद कियो बहु बानी, खंड खंड।

अभी कस्यों कहिए, जकारन हम तुम आराधे, सो दुख अजहु सहिए। कह रविदास भगत एक बाड़ी, अभी का स्यों कहिए, जा कारण हम तुम आराध।

जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नान।

कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भए अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा उठ स्नान करो प्रभाते सोए हर अरादे बिखेड़े दाओ।

सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास।

0: अकाल मूर्त अजुनी सह पंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन हो दया गुर बिन अंदार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ जो सुन्ये अंदर खेत।

पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती।

न जाइए जियो पिंड सब सदा देखा जे अगवाइए जे लोड़ा चंगा अपना कृपा होनी च सदाइए जे जरवान।

दीर्घ रोग है, दारू पीस माए, कृपा कर दे अपनी तंगुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जन।

लापुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडहा अंड जजेर जुद पुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सभना जिन करते करना।

लक्ष्मण संग्राम वैरन में छुटे प्राण, लक्ष्मण लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना क्या लिखा अपने जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी सान पौड़ी सच्चा साहिब।

सवैये महले चौथे के एक ओंकार सात गोर परसार एक मान पुरख निरंजन त्यावो गोर परसार हर गुण साध गावो।

तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्स पायो बिन सेओ सगल निहोरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गोजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बाल है थोरा अनेक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चाले भोरा।